0: जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sound check. Studio time. Studio time.
0: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपजुला को मिलन सकता
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो मिसल मूल्य
1: टिकाऊ रद्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखल ढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखल ढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्रणाली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ उखल ढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842808300

सरकारी पत्र को आधार में यातायात कार्यालय ने जारी दर्ता नंबर स्कैन करी सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि जारी कर स्थानीय तह में दर्ता भूमिका व यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भे स्थानीय तह में हस्तांतरण भूमिका ई रिक्शा को सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तह में जेएनजी को आंदोलन को क्रम में जली मस्तो भएको अवस्थामा स्थानीय तह में दर्ता भूमिका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाण को आधार में सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलबुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवाग्राही नागरिकता को फोटो कपी दुई प्रति हस्ताले खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को फोटो कपी सवारी साधन को इंजिन नंबर र चेसिस नंबर देखिने गरेको फोटो सवारी साधन को पूर्ण भाग देखिने गरेको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तह में सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षक में थप कर लाग्ने छैन।

0: यो चाड़ पर्व में यूरोपेन्स प्रतिदिन रंगीन से घर वर्षीय उपहार रु 50,000 को यूरोपेन्स को खरीद पाओगे लकी ड्रॉ कूपन पाओगे 3% एसी 1 साल डबल डोर फ्री 3% चूलो आइस कुकर वॉल क्लॉक अनि बम्पर प्राइस में पाओगे 1 जोड़ी को लागि 22 यूरोपेन्स घर मात्र होइन रंगाउनुहोस् सपना विगत 26 वर्षदेखि कृषि तथा भेटेरिनरी शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी विकास
1: सार्वजनिक नीति साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज आफ्नै कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्रयोगशाला तथा फार्म भएको दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एनएएच भेटेरिनरी डाक्टरमा भर्ना खुल्यो सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विकास कृतिपुर काठमाडौँ फोन 01-590-81-89 मोबाइल 97-72-540-89

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाट फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेन्ज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।

हस रखना साँझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानुना बाघ भालू गैरा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

घस रखना साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानू बाघ भालू गैरा चितुआ पसे पछी।

0: सड़क प्राय गांडा ध्यान दियो। सड़क सीमा अतिक्रमण न करो। सड़क सीमा में अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण न करो। सड़क को नाली ठल तथा पानी निकास बंद हुन नदियो। सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गराउं। सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियम को पालना गरौं। सवारी साधन में झुंडीएर वा छत में बसर यात्रा नगरऊ। सड़क को क्षमता भन्दा बड़ी भार प्रयोग नगरऊ। जेब्रा क्रसिंग मात्र बाटो काटने गरौं। सड़क को तत्काल मर्मतमार करने गरौं। यात्रा को क्रम में कुनै समस्या भए नजिक को प्रहरीलाई खबर गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी सन्देश।

सत्तालीस सतासी पैंतीस उन्नाइस समुद्र साक्य अंठानब्बे एकसठी तिरासी पैंतीस चौतीस टेलीफोन शून्य अड़तीस पांच बीस दुई सौ त्रिचालीस नमूना दूधकुंड आयल फॉर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ अंठानब्बे बैसठी बयासी तेरह सतासी नमूना दूधकुंड आयल फॉर्म स्टोर संगे न्यू आई सब मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्स में संपूर्ण गाड़ी मरमत संबंधी सेवा उपलब्ध छ। यहां साना तथा ठूला जुनसुक गाड़ी मरमत कर संपर्क रमीला श्रेष्ठ अंठानब्बे बैसठी तिरानब्बे शून्य छयालीस नमूना दूधकुंड आयल फॉर्म स्टोर सोनू दूधकुंड नगर पालिका सात गारमा जोरबौद सुलुखुम्बु।

हमारा संस्कृति की ओर बनने था सबसे विशेष के आजकल आत्मता की यूनिटी कार्पेट नहीं हो विगत तीन दशक देखी को सुंदर साथ यदि कार्पेट के अंदर कार्पेट को पसारे यदि को लोगों ने ना बिस्मिल्लाह यदि कार्पेट कार्पेट को शहंशाह

0: सोनु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. In studio time.
2: It's 3 PM. Musical theme budget.
3: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोनू दूध को नगर पालिका 500 कुंभू.

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सिटी एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्नको 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

अब चखने जानु बड़ी अरुण कहीं था छेन चखने जानु बड़ी अरुण कहीं था छेन।

नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदान करने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण के लिए नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राखने अनुरोध सेवा प्राप्ति में कोटी को प्रलोभन नगरी आपू सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई घरासना अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर आर्थिक वर्ष 2084-84 का लागि प्रदेशबाट संचालन गरिने आयोजना कार्यक्रम को लागि प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धमा कृषि प्रदेश योजना आयोगको सूचना आयोजनाको वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना दण्ड व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बन्दछन् स्थानीय तहर प्रदेश कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 2084-85 कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको सम्बन्धमा यस आयोगबाट मिति 2082 साल चैत नौ गते आयोजना दण्ड सूचना प्रमाण मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 5 गते घटना प्रणालीको प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बनाउन हुन उक्त प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आधार सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोगको वेबसाइट ppc.cc.gov.np हेर्न सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत व गृह महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदान करने सेवा प्राप्ति को सहजीकरण के लिए नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त होने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपू सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई घरासना अधिकार कार्यालय प्रमुख शर्मा सूची संपर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय

0: ए बाबू नौ न मेरे तो हाथ खुट्टा अन्ना सा झुमझुम करिनासले भंडान बनाए मेरे पनी केकी हो केके खी एक बार को जिंदगी दुख दुख में बिताऊन पर्ने उपचार कता कराने हो
1: दीदी मैं गैस्ट्रिक भर तनाव थाके हिरान भिंदा नदी रातभर जागरण जस्ते बस् तर यह सब रोग उपचार आमजी औषधालय में हो रे भर उपचार कराने भाग आमजी औषधालय तीर हिड़े नम स्थिति और संगे जाऊ
2: यहाँ नसा च्यापिएको हड्डी खिएको हात खुट्टा झमझमाउने पुरानो बाथरोग दम खोकी ग्यास्ट्राइटिस ब्लड प्रेसर अल्सर हर्निया पाइल्स फिस्टुला

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन सूचना
1: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
0: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
0: टिकाऊ र भरपर्दो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
0: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
0: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को विक्टल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित नया का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
0: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथै सर्भिसिङ सेवा
1: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
0: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुङ्गा
0: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002222 र 9842803000

0: 신 SFO 한국어 퍼즐로 다이
1: उपभोक्ता अधिकार को उत्तम रक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बी दिशक लिने र दिने गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्यासकी नीति गुणस्तर एक गरी मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कुनै हानि नुकसानी भए इत्यादि प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग कृति पुगे क्षतिपूर्ति नगरौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश सूचना स्टेट स्कूल नेपाल को सेकेंड होम प्रोग्राम को लगी एकजना महिला कर्मचारी अवस्थित भैया दरखास्त आह्वान कर शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का DOBSNEPL.com में प्रकाशित सूचना योग अनुरोध कर दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गति अर्थात अगस्त 31 तारीख मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाने सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ बाथरूम प्रदूषण नियंत्रण जिम्मेवार बनाऊ बाथरूम संरक्षण करौ जीवन रक्षा करौ
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में

0: सोनु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. The studio time.
2: It's 6 p.m. Saturday.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलह दुकान नगर पालिका 5 सोलह कुंभू

आदरणीय श्रोता रोमा गदे प्रभु येशु ख्रिस्ट लमिन्द्रे जयमसी अनि फ्याफुल्ला रंगी दु मार्गदर्शन केतंगरी स्वागत लवमुला अवश्य नु रंगने केतंग सर्मदा रेडियो नाम्बे दोहाजी शिव बल मजितला अवश्य नु रंगदेन नादा परमेश्वर जे प्रशस्त आशीष दोनचला मुला बिसिंगाई आशा लबल मुला प्रिय रोमा गदे यर्बल केतंगरी न्यांगजे परमेश्वर ता रूप लदोबन मुला बिबा बारे बाचे लबल मुला समय अभाव जे लसे न्यांग बिचरिनो बिदा तदोजे किंग फेरे चु केतंग क्यामजिंगा रंगी दा चु संबंधी ताए पांसेल मुला प्रिय रोमा गदे रंगनी तयार तस्युब्र मुला होरंग विषम तिये यांगजे रंगजेन नाला रो बिबा विषयरी बाचे लसेल मुला पवित्र परमेश्वर ल दृष्टि संसार ल प्रत्येक मे पापी हिन्ना बाइबल रे एरंगले प्रिबल मुला छांगमजन पाप लबल मुला परमेश्वर ल महिमा तब ज्ञान जे थोर बल मुला चो न्यांगजे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे रोनी तीन अध्याय ल 23 पद रे यांग मुला परमेश्वर जे थानबला स्तर ज्ञान जे मार ताय बल मुला न्यांग जे लबल पाप अनि अपराध जे अथवा अधर्म कदे जे अब हम ज्ञान जे लुबहाम मुला रंगला रोमा कदे ज्ञान जे लुबहाम मुला रंगला छिमेकी जेन लुबहाम मुला रंग जे के लब हाकिम ज्ञान जे लुबहाम मुला नचेंग कदे ज्ञान जे लुबहाम मुला अनि चोरौले थाङमान निकदे ज्ञान जे छुम्बा हाम मुला तर परमेश्वर लसल ज्ञान जे हाइमान छुम्बा हाम मुला थेजे न्याला हृदय ल विचार छाङमान सेब मुला अनि लोबा योलाबा ठक्तीबा आज्ञा पालन आलाबा घमण्ड लबा पोमहाबा एरङ लबा से परमेश्वर लागाडी ग्रहण योग्य आतब मुला चु चाङमान पाप हिन्न थेजे पाप द घृण लाभ मुला अनि दण्ड तोन्न मुला यदि हाल एजे रङला विरुद्ध रे ताए आज बताम पाङबला मुला दोष लाबला मुला विषम टिका रङ थे सैदी बहामला रङ जे न्याय लाभ माइब मुला घृण अन्याय आजब के लाभ हिन्न आजब के लाभ कादे जे दण्ड याङ मुला अनि सत्तन नरकरी दिन बिताइदियो मुला तर परमेश्वर जे ज्ञान्दा नरक ल दण्ड ज्ञान्जे छुट्याइ दि मान मुला तस विषम थेजे छङमान मिगति दा लानन माया लसिबु मुला तस विषम पाप ल ज्याला मृत्यु हिन्ना तर परमेश्वर ल होते गुण हाबल वरदान ख्रिस्ट येशुरी ज्ञान्ला प्रभुरी अनन्त जीवन हिन्न क्रुसरी का बगाइदिसी सीमाले छङमान मिकादेला पाप येशु जे क्रुस फेरी नासियो जे अनि न्याङदा न्याङला पाप क्याम जे छुटकारा लासियो जे येशु ख्रिस्ट शिवला शरीर दा दुर्सरी क्या जी अनि चन्द मिकादे रङलेन थे दुर्सरी आसियो नि अथवा थे सोम्बे कुन लेचा दुर्स क्याम जे पुनरुत्थान तासियो जी यदि थे होरङले शिव क्याम जे पुनरुत्थान आतबल विषम न्याङला तिगैनु आस आतासेला शिव क्याम जे पुनरुत्थान तसी लिचा थे चु संसारी 40 दिन सम्म शिवजी थे बेलरी

Yusilamula. Halaya Jino, Rab Yesu Christi Biswas, Laba, Ham Selamula. Ani Rida Ringeva, Ham Selamula. Ham Selamula. Tenikade, Sorgari Prab Yesu Christian, Tasela Mula. Taranyangde Mukti, Harangli Yangba, Hamba Mula. Pangba Prasna Labari, Sige. Prab Yesu Bahe, Rangla Pahab Chamalaba. अनि स्वर्गरी परमेश्वर आवजा दोनलाबा चन्दो हजबन क्याम आरे हेरंग तैरी तिंगिनो प्रभु येशु ख्रिस्त रंगला जीवन दि प्रभु देन मुक्तिदाता बेसी विश्वास अनि ग्रहण लस्युगो ठेग्याम जे मुक्ति उदान प्राप्त लबा हमसेला मुला प्रभु येशु ख्रिस्त जे सुंगबाला मुला हिन्मा नुगाई एन्दा पांगमा मुला हलान छार्तसी जन्मयादिनी पंसम थेजे परमेश्वर राज्य मांगमा अहम प्रभु येशु ख्रिस्ते सुंगमला ज्यागो ना नफसंगरी तिसी दगदकाई तिसेल मुला हलयो जे नला स्वर थेसी म्राम ठोंगजी पंसम ना थेजा नंगरी सबसेल मुला अनि थेदेन भोजन लसेल मुला राथेजे नादेन चासेला मुला कसी विषम यदि एजे येशु प्रभुदा प्रभु हिन्ना पंसी रंगला चालजे स्वीकार लाजी पंसम अनि परमेश्वर जे थेदा जीवित तान लाजी बिसी रंगला रिदेरी विश्वास लाजी पंसम येला उदा तासेला मुला थेरंग तेरी प्रिय रोमांगदे रानीजे तीनो विश्वास लयमानसम एरंगले प्रार्थना लस्युगो प्रभु ना पापी हिन्ना ना दा क्षमा लस्युगो रंग नाला लागि संसारी दुहाबला हिन्ना शिवला हिन्ना सोम्रेले चपुनरुथान तस्युगला हिन्ना ये नाला प्रभु अनि मुक्तिदाता हिन्ना ना दा रंगला संतान सोङो आमेन प्रिय रोमागल चु प्रार्थनाला साथनु ना दा समय जे बिदा पिन्जे अर्को केतनरी रूपतला तिमीलाई लागि बिदा तन्सिएको रानी द परमेश्वर जे प्रशस्त आशिष दन्सिगे आमेन।

0: रोगादे रंगसे दन्दे बर्खर ज्ञानस्युबन मोला मार्ग दर्खन गेदाङ रोगादे तिनी लु गेदाङ रङनिदा खरङ नम्जी तुदे चु गेदाङ ज्ञानसी रङनिदा तिकै खुल्दुरी ताबा मुसम रङनिला पत्रला नुन्छे आस लसिची बमुला रङनिला सल्ला कुइ खला कुइ खस्युला विवाह रङनिदा आनन्द देन बमुला तुदे रङनिला प्रार्थना लदोब विषय दुगो मुला विषम रङनिसी कुइ खस्युगु विवाह मन्ना देन बमुला रंगनीदा मन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरङमा मुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 98473 35679 98473 35679
0: लसो रोदुगु तिनी इच्छु गेदाङ यामसेङनी फेसी निबन मला दोषी खाबा चुनुन दुईरी रंगनी लंगोनसाङले रूप तबरी थला विवा बाच्छ लवन नै इच्छु गेम फेसी निला लसो फ्याफुल्ला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: I'm Jake Kusatma. New Star Digital Color Lab of Jwalamai Offset Press. Solu Dutkunda Nagarpalika 5, Solu Kumbu.